बहु परपंच कर परधन ल्यावे, सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले, जेड़ी पापा दी खटी तू खट रहा है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै दीदी। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नू भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये धन

एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल शिन कमाई विच तन कठे करन विच ला दिते ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू एक श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते क्योंकि हम आदमिया एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई। जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह

नानक सिद्धी पातशाह बख्शिश कर दिया भाई पही प्राप्त मानस दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक स्वास ते जितने तक दुनिया विच तू

सब लोग पढ़ते फिरते बहुत आयो, कल खोर समुद्र में मूड दुखे, कब मुंह मिट है नीरे पछतायो। सत विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ। जिन्हें धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है, ने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा। तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव। गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार, पातशाह हुक्म करो। हलो कह लगे गंगा जी, फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया। कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए। अज गुरु की संगता की सेवा करनी है, अपने हथी पहला चक्की पी। दैनी गुणा वाली मां जगत माता, माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की पी। आटा तैयार किया, फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार की, सोने थाल विच पाई, उत्ते चिट्टा रुमाल पाए। माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए। हजूर कह लगे नी गंगा जी असि आप ही अपने चेपे। तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन सीख से रख चादर की हुकम मारी, तुरन लगे। माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है। हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर कर। जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास, तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली। हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो, गर्मी बड़ी। तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल ती रखो धन गुरु रात दसो। गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो। नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते, पर समुद्र कदे नहीं मिलता। समुद्र कदे नहीं आता, तक लो प्यारी सात संगत

संबंध भी ये हो। फिर आप बच्चा जितने जोड़े ने रखा तो नहीं फिर अजय पाओ कुटी भी सहज जी कह लगे गंगा जी जी बात है उसी तो महिला नु जाओ साई जी आप ही चलो अगर कह लगे थोड़ी जी सेवा बाकी रह गई है वो भी कर तो अनुप्रवर्जन दे पातशाह संगत विचो नगदे नगदे नगदे जथेदार के कोल आके खड़ो गए प्यार नाल कहया जथेदार जी गुरु की संगता ने जोड़िया वास्ते सेवादार की लोड़ है ना दास कम और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाई नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की रात प्राप्त शादी देख चुका है ठंडा जल पिलाया सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यारे तेन इतने नहीं बिठाना तेन नाल लेके चलांगे ते गुरु अगे अरदास करांगे पातशाह पहली जी तेरे दर्शन करने वास्ते आया और कुछ नहीं मंगने जो कुछ सिख नू दिता जो साड़ी को नहीं तेरे सबके तो साढ़े गुना बखे जाए कह लगी जथेदार जी मैनू इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने जी सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है तो जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार आखो संगत अंदर पहुंच साहब श्री गुरु साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया साध संग जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर गुरुद्वारा पितली साहब जी ने सूची देखे पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान इतिहासक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पिपली साहब गुरुद्वारा संगत ने कहा बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हो क्योंकि संगत पहले ही नहीं दर्शन करवा गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुद्धे देखे नहीं रात श्री हरिमंदर साहब बहुत पे आ 11 का टाइम साहब जी ने कहा सी बाबे यार गुरु दिया संगतां दूर उतर के आईया हर कुछ मिला ते उतारा कीता है गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा सी पातशाह हुकुम करो जाके लंगर छका दें पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगतां की सेवा करता है अज इहदा सानू दे रात दी पितली साहब एक दूजे के मुंह वाल वेख लगे जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रचार भी छकाया जल भी पिलाया पक्षा भी करता रे बाबा बुद्धा जी कह लगे प्यारे हो सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी किस तरह हो सकता है तो बाबे ने कहा पता हूं उसे कितने है बड़े निराश एक दूजे ने मुंह वाल तके उदासी भी जाके कह लगे बाबे हूं तो जोड़िया का राखा बिठा के बाबे बुढ़े दिया कुछ प्यारी सात संगत पंजे गुरु नानक देव जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जाए मगर संगत भी भजी जाए समझ गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेंगे उन्हों साफ कर देते हैं और धूड़ मथे दे किसी अगम भी खेड़े पढ़ते हैं

Toda la clase. O quizás toda la vez por ahí. Por alpahar, calida pasta, alpahar, solo, itna thoda khao, jidna khate dikari na ho. Itna thoda khao, jidna sharir sara din peeding. Sabras mithe maniye, suniye saalone, khar kursi mukbolne, marv naad kiye, chhati amrit pao, ek jhar ko nazar kare, baba aur khana kusi khuar, jis khate tan peediye, man mein chale, to khade na khao. ये जरा मन विकारी मन पूरे पास के जन और खाने झन कितना थोड़ा समय बाबा जी कहने लगे इतना थोड़ा समय जी जरा अमृत वेला तो ही ना क्योंकि अमृत वेला खास शक्ति छेवी पौड़ी केड़ी है ऐसा जी कहने लगे सतगुरु दा उपदेश हमारा गुरु का उपदेश जो गुरु का हुक्म है उन्हें चोरी स्वागत कौने जो पति का हुक्म है लैट पुत्र कौन है जो माता पिता का हुक्म है सिख कौन है जो गुरु का हुक्म है जो गुरु का हुक्म अन्न छकना बाणी पढ़ सत्संग में जुड़ना बुरे को मन छड़ना चाहिए ही अपने बनी ये गुरु का हुक्म है गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है पर जिथे सिखी की रोशनी है उत्थे गुरु सतगुर का उपदेश बनावे जिस वे छे पौड़ियां चढ़ जाता है छे क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है तो भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है तो भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज सुनो सहज अवस्था की प्राप्ति बाबूनिया संत दूर नेड़े चल के आई संख्या अच आप भी तन हो इतों के प्रबंधक भी तन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया साहब सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरियां पड़ी बड़ी संगत जुड़ी अब गुरमुख माई आए एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लूह नूह पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और कुछ सिखा जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीजा मैंने बड़ी खुशी हुई मान कुबेर करे वस्तु सामू सदा लाख गुरुद्वारे बेशक बना लो कोई हद नहीं गुरुद्वारे बनाने माड़ी चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साढ़ा एक श्री गुरु साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान चार सत्संग से जिसे चार चीजा हो गई बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते सर उ गुरु नानक जरूर हो गए अब कोई समा ज्यादा हो गया पर ज्यादा होया जाया नहीं क्योंकि अब इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात का तो कोई समा चल दिया अब सवेरे जिस वे कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब कितनी साल वाली साखी तुम किधरे अफ्रीका नैरोबी कीती सी ते काफी रिकॉर्ड गई ते वो साखी सुनी है चित करता है फिर फेर सुना दे उन्हों का हुक्म सचे है क्योंकि बाबा जी के पिंड के नेड़े ही रहने वाले सौकिया के रहने वाले उन्हों का हुक्म से ता प्यार पिछली साल वाले साखी आदमी ने सब समा तो ज्यादा होया तो समा सफल है आई करी सी जो सौ आदमी आए तो प्यार को लेके सेवक का चित बड़ा पसंद है नहीं तो इतना चिर बहना बड़ा कठिन अरे गुरु की बख्शिश है यही रहमत है गुरु की जो साडा मन गुरु नाल जुड़िया है तो आओ अरदास करिए अनुप्रवर्धन के पातशाह साढ़े से बख्शिश करो ये जड़िया मंजिला हैं गुरमित्री ने गरीबी ये सारिया पौड़िया असि महीना से चढ़ने की कोशिश करिए आस्ता आस्ता ये दाल ये मंदिर साढ़े भी मुक जाए तो साड़ी मनुष्य यात्रा खत्म साधा जी
seven o'clock.

0: मत को परम भूले संसार, निगुरे का है नाओ बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहा सी, जा रहा सी। इन्हां दा नाम उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। यह हरिद्वार की यात्रा ते जांदे हन हर एक साल, ते साध संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे, ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगी अमरू जी, ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हाले तक गुरु नहीं धारण किया, ये तेरी यात्रावां असफल हन, बेकार हन, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हदा प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहा। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई, ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुर मुकत ना पाई ए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग ए वाजीब आ, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थों ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, यह गल नहीं है। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल, गुरपुरा पेटियो वट पागी मने पया प्रगासा। आओ निगुरे पुरुष दा यह हाल है, ते आओ वट पागियो असी सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देओ, नाम दी बख्शिश करदा रवे सदा, सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।

अपनी पौड़ी विच बयान कीतियां ने। भगत कबीर साहब जेड़े बनारस विच रहिंदे ने, किसे ने कहा ऐ कबीर तू परमेश्वर दी भगती बड़ी करना है, पर ए दस तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब ने कहा मेरा गुरु कोई नहीं। दसण वाले ने कहा कबीर जिदा कोई गुरु ना होवे ओदी गति नहीं हुंदी। ता कबीर साहब ने कहा भाई मैनू यह भी दस दियो कि मैं गुरु किनू बनावां। ता दसण वाले ने कहा बनारस विच ही रहिंदे ने स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, तू उन्हां नू अपना गुरु बना। पर एक गल है कबीर तू है जुलाया नीवी जात दा ते स्वामी जी उची जात दे। स्वामी जी ते जात पात नहीं देख दे, पर उन्हां दे चेलिया ने तैनू लाग नहीं लगन देना। ता कबीर साहब ने कहा फिर मैं की करा। ता दसन वाले ने कहा कबीर एक रस्ता है स्वामी रामानंद रोज सवेरे उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने, जेड़ियां पौड़ियां तू ओ इशनान करन वास्ते उतरदे ने उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मा पै जा। गुरु दी लोड़ सी, रात पई पर कबीर नू चैन किथे। मन तड़फदा कदू समा आवे के जदू मैं गुरु वाला बना। ओ वेला जा दुनिया दे लोग सौंदे ने पर प्यारे उठदे। कबीर साहब करों तुरे मुंह सिर लवेटिया गंगा दियां पौड़ियां ते जाके लम्मे पै गए। इंतजार करन लगे।

होए बिरकत बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने क्योंकि रब दे प्यारे रात

समा बीते है। स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए, ए मूर्ति पूजा नहीं सन करते। कमरे का बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नूं इशनान कराया करते सन। और एक दिन इशनान करारे ने ठाकुर नूं कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखिया। अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा। हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, मुकट लावां तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाणा होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, जे हार ना पावां पूजा पूरी नहीं हुंदी। इन्ने नूं कन्नां विच इक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है। गंढ खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए। बुआ खोलिया, बार की देखते ने, भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां। अमृत वेले गंगा दियां पौड़ियां ते सुता सां, तां तुसी कहा सी उठ राम के राम को। ओदों दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दियां अखां विच अथरू आ गए। मन पार आया, उन्हां कबीर नूं बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया। ते नाले कहंदे ने, ओए कबीर।

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसे है, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वह पत्ता पे है तुलसी का जिदे उत्ते राम लिखे है। ते सेठ ने हसद्या होया थोड़ा जिहा सोना तकड़ी दे दूसरे छापे पाया, पर हैरान हो गया वो राम वाला छाबा उत्ते नहीं उतरे। एक तोला, दो तोले, पांच तोले, दस तोले करद्या करद्या जिन्ना भी सोना सी उस तकड़ी विच पा दिता, पर जिहड़े राम दे अखर वाला

शिवजी भगवान ने जदू अर्जुन दे नाल युद्ध किया ता छोटे दे रूप विच भज के उस जगह आए अर्जुन तो हार के और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप विच जिसनु हिंदी विच सांड कहंदे ने उदे रूप विच भजे आए ते ओ जड़ा पहाड़ सी उदे विच समा गए ते शरीर दा पिछला हिस्सा उस पहाड़ दे बाहर है जिदी के

बदलावन दे। मैं ते करमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई, जिस अकाल पुरख ने, जिस रमैये ने ये दुनिया बनाई,

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान किया।